0: रेडियो एन आर एन 99.1
1: खरो विषयमा चारो बहस नेपाली बहस यस नेपाली बहस का साथमा प्रीति तयारी चौचौ
2: ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक
1: दिस होम इन्टरनेट

soy. LG ले ले आयो नया LG Essential Series. अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी को कंप्लीट रेंज, 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई. नागरिकता भए पुग्छ. हर एक घर को खुशी घर घर में LG. LG, life's good.

LG ले आयो नया LG Essential Series अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में LG LG लाइफ्स गुड

soy. LG ले आयो नया LG Essential Series अब किफायती मूल्य में refrigerator, washing machine, AC को complete range, 10 वर्ष को warranty सहित 0% no cost EMI, नागरिकता भए पुग्छ, हर एक घर को खुशी, घर घर में LG, LG, life's good.

0: करी
1: देसवारी क्या हृदय चौमुखी लाई गईला आखाईले मन चोर न्यारे छोरू पसा सैवाजा बाडुल की लाऊन्या

मेकअप करने न परने अनु हरकती सादा शिव जिलाई पार्वती कृष्ण जिलाई राधा बाडुल की लाउने।

अन पैसली झम झम ना देवड़ा भाकामी खल्टी हाली घर लिऊ की राखू की आखामी बाड़ल की लाऊने।

0: आवाज को सीआरबीटी 0144011697
1: महिला आवाज को सीआरबीटी 0144011698
0: पुरुष आवाज को पीआरबीटी 6021033 8
1: महिला आवाज को पीआरबीटी 6021033 9

0: सीआरबीटी 0414-11-697
1: महिला आवाज को सीआरबीटी 0414-11-698
0: पुरुष आवाज को पीआरबीटी 7021-033-8
1: महिला आवाज को पीआरबीटी 7021-033-9